गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तीसरी वेर आए और तीसरी वेर नंगी कृपान है, खून दे नाल लथपथ है, और तीसरी वेर भाई हिम्मत सिंह जी प्यारा, उदू बाद मोहकम सिंह जी प्यारा, साहिब सिंह जी प्यारा। जे मैं सारे दा डिटेल च ना थौं पते अर्ज करा ते समा लंबा हो जाएगा। एक आखिरी दो मिनट की चीज कह के तो खिमा दे जाचक होना है। और जिस वेले पंज नितरे पंजां तो बाद कुछ समा कलगी वाले पातशाह आए ना, कई घबरा गए, कई तो भज गए, कई तो लंगर च जा बड़े, और जेड़े जदों काफी समा ना आए तो पिछे वेखण लगे कि पिछले पास ना आ जाण कलगी वाले पास। कुछ देर तो बाद आए तो पंजे ही नाल ने, जदों चेहरिया ते नूर वेख्या, गुरु की बख्शिश हो गई ना, फिर सारे काले पै के मैं क्यों नहीं उठे। उदू बाद अमृता बाटा तैयार किया, अमृता बाटा तैयार करके पांच घुट इनू पीण नू दिते, इहदी अंतरीप आत्मा बदली, पांच छटे इहदियां अखां विच मारे, इहदी तकनी सम कीती, इहदी तकनी किसे गरीब नू वेख के लाल ना होवे और किसे तकड़े नू वेख के नीवी ना पावे, इहदी तकनी विच वेख पराईयां चंगियां मामा धीआं भैणां जाणे वाली अवस्था लियांदी, पांच चुले इहदे दिमाग विच पाए, इहदी रहणी बदली, इहदी कहणी बदली, इहदी खुराक बदली, इहदी पोशाक बदली। और उस तो बाद पंज ककार दिते, ककार कड़ा जिहड़ा है, कड़ा कहे चोरी आदि घात को ना हथ लावी। कई वीर पुछ लेंदे है वे कड़ा पाउण दा मतलब की, भाई साहब भाई संतोख सिंह जी लिखते ने वे कड़ा कहे चोरी आदि घात को ना हथ लावी, कच कहे जती रौ त्याग पर नारको, गंगा कहे टुटे रोमा वांग तज पाप निंदे है, कहे कृपान कट लो मोह हंकार को, केस कहण साडी न्याई पाल सत संग धर्म, भई अमृत कहे अमर हो जा पाके शब्द सार को, ऐसे पंजे कके जिन तार लै संतोख सिंह पावे गंग सिंह साहब के ददार को, ते कलगी वाले पातशाह।

ब्रह्मा दिया पत्तियां विच वसदा है। ब्रह्मपाती बिस्नडारी विष्णु भगवान डालियां च वसदा है। फूल शंकर दे ओ भोले नाथ शंकर फूलों विच वसदा है।

परम सम्मान गुरु खालसा साहब सिंह जी, आप जी बड़े प्यार साहब शरदा साहब धन धन श्री गोबिंद सिंह साहब जी महाराज तिना का धन्यवाद करते हुए खालसा पंथ के सृजन हारे दाता की सिफत सराबे अपने शुकराना करन लई बाणी नाल जुड़ा गुरसिख साध संगत ने यतन किया है। बहुत ही शलाघा योग कदम है। एक गल याद रखने वाली है, वो है अपने पिता का विरसा। जे असी अपने पिता के वारस हां, जायदाद असां पिता की सामनी है, हक असी जताते हैं, तो फिर ये शब्द जो कहे हैं गुरु साहब जी ने कहो जहा खालसा साजिया दिखाया है। आत्म रस जो ज्ञान ही सो है खालस देव, आत्म रस जो ज्ञान ही सो है खालस देव, प्रभ मैं मोह मैं तास मैं रंजक नाहिं भेद। गुरु नानक जी घाटी प्रथा है, गुरु चेला बनिया चेला गुरु बने, इस करके कोई गुरु अते चेले विच भेद नहीं रहा। एक गल होर याद रखने वाली है, गुरु साहब ने सानू गल ना लाया, आनंदपुर का वाकया याद करो, सिंह विदावा लिख के दे गए, आपे अपने घर प्रत आए, उन्होंने मरी हुई अणख जगाया कि ने घर दियां मातावां भैणां अते सिंघणियां ने। मैं जो तत् विचारिया है, अगर अजकल दियां पत्नियां भैणां मातावां इस गल का प्रण कर लैन कि गुरु दे सिख अखवाण वाले अते गुरु नूं विदावा लिख के चल रहे गुरसिख अगर गुरु दे बनना चाहते हैं, अगर गुरु का अखवाना चाहते हैं, तो गुरां का हुक्म मने। ऐसी गल ना होवे, असी भुले हुए छेती घर नूं प्रत आईए ते अच्छा है। ऐसा ना होवे के घर प्रत के फिर जिनी कुर्बानी चाली सिंघां नूं करनी पई, इतिहास आप दे सामने है। ऐसे दशमेश पिता जिन्होंने सानू गरीबां नूं लताड़िया होया नूं गले गाया, ऐसे शहनशाह मतलब भाई साहब भाई नानदास साहब जी ने जो शुभ वचन कहे हैं, आप प्यार साहब।

मन करता है। ये पवित्र शब्द सतगुर अपने सुनी अरदास कारज आया सगला रास। जब सतगुर के चरणों में अरदास की फिर सतगुर ने अरदास सुनी। जेड़ा अरदास सुनता है, जेड़ा अपने सिख की लाज रखता है, फिर उसके चरण तो के पीड़ नूं क्यों ना मन करे। कई कहिंदे ने अरदास की पर अरदास पूरी नहीं हुई। पर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का महावाक है, बिरथी कदे ना होवई जन की अरदास। अरदास कदी बिरथी नहीं जाती। श्री आनंदपुर साहब हजारां संगतां दर्शनां वास्ते आंदियां हन। इन्हां संगतां दे विच एक पति पत्नी और एक इन्हां दी छोटी बच्ची वो भी आए हन। एक महीना श्री आनंदपुर साहब रहे। इस बच्ची दे माता पिता ते चले गए पर ए ना गई। ये धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के महल माता साहब देवा दे कोल ए बच्ची रहन लग पई। समा बीतिया, वसाखी वाले दिन केसगढ़ की पवित्र धरती से धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अमृत की दात दिती। इस बच्ची ने भी अमृत छकिया। पहला नाम बसंत लता सी, अमृत छकिया ते बसंत कौर बन गई। श्री आनंदपुर साहब के किले नु जिस वक्त घेरा पिया और गुरु साहबा ने आनंदपुर साहब का किला जिस वक्त छड़िया, सरसा नदी पार कीती, सरसा नदी पार कीता, गुरु साहबां दा सारा वही इत्थे आके विछड़ गया। तां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वड्डे साहबजादे ते चालीक दे करीब सिख एक पासे, तां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे छोटे साहबजादे अते माता गुजरी एक पासे, सारा परिवार और सिख विछड़ गए। इस समय जिहड़ी ये बसंत कौर सी इहदे हाथ विच भी नंगी कृपान है, कमर कसा कीता है, यह भी अपने सिंह वीरां दे नाल दुश्मनां नाल लड़दी हुई नदी पार करती है। ठोकर लगी, थले डिग पई, सिपाही पकड़ के समुंद खान दे कोल लै गए। समुंद खान ने कहा, बसंत कौर ना तेरा कलगियां वाला इत्थे आना है, ना कोई तेरा सिख भरा, मेरी बेगम बन जा राज करेंगी। पर बसंत कौर ने कहा, समुंद खान मैं कलगियां वाले पिता का अमृत छकिया, मैं प्रण कीता दुनिया विच मेरा कोई पति नहीं होवेगा, अपना जीवन कलगियां वाले पिता दे लेखे ला दिता है। बसंत कौर नूं कैद किया गया, तसीहे दिते, लालच दिते, पर बसंत कौर डोली नहीं। आखिर एक कैद खाने विच बसंत कौर नूं कैद किया गया। समुंद खान उस कैद खाने विच आया, बसंत कौर नूं कहन लगा, बसंत कौर तेरा कलगियां वाला गुरु चमकौर दी गढ़ी विच मारिया गया, हुण तेनू बचाण वाला कोई नहीं। समुंद खान अगे होया, बाहां फैलाईयां हन बसंत कौर नूं पकड़न वास्ते, पर बसंत कौर थड़े तो इकदम उठ के खलोई, गरज के कहन लगी, ओ दुष्टा परा हो जा, ओ देख मेरा कलगियां वाला पिता आ गया। जद कहा, ओ देख मेरा कलगियां वाला पिता आ गया है, उस वक्त बसंत कौर नूं प्रतख दर्शन उस कैदखाने विच हो रहे हैं। ते समुंद खान मानो पत्थर दा बुत हो गया,
हिल जुल नहीं सी सकदा। फिर इसने बेनती की थी, बसंत कौर मैनू बख्श दे, मैं भुल गया। ते बसंत कौर ने कहा, खिमा मंगनी ते मेरे कलगिया वाले पिता कोलू मंग। फिर इस मुंद खान ठीक होया, बसंत कौर दे पैरां दे मत्था टेकिया, एक महीना कोल रख के सेवा की थी। जा तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज लखी जंगल पहुंचे, फिर बसंत कौर नू 100 सवारां दे नाल सतगुरां दे कोल भेजिया। सास ए है अरदास और गुरु दे प्यार दी शक्ति। आओ आपां भी गुरु ते भरोसा रखिए, हर दुख वेले सतगुरु साडी भी इसी तरह सहायता करेंगे।

दुर्योधन। एक बारी प्यार नाल बोलिए सतनाम, मन बिरतिया एकाग्र करें। भाई साहब लिखते हैं फिटका होके बोलिया दुर्योधन, की प्यासी नौकरां दे कर। भाई साहब लिखते हैं

राजा बोली से बोली जा रही। ठीक है भाई, हुण मैं बोला भगवान ने आख्या, हुण तू गल अपनी पूरी कर ली, हां हुण मैनू जवाब दियो। भगवान ने आख्या हुण तू सन्मुख होके सामने होके मेरी गल सुन, तेरे घर विच सबो कुछ सब, पर एक गल मैनू नहीं दिसदी, जिथे एक गल ना होवे मैं उथे भुल के भी नहीं जांदा। कि भाई साहब लिखते हैं

को आस जगत्र गुरु की पार्श पेट पर्श करो रामदास गुरु हर सत की ओ समरथ गुर सिर हतरे ओ कसमल जाय हर घनन कसमल जा हर घनन।

गुरु अमर गुरु श्री सत कल जुग राखी पत अग्नि देखत गत चरण कमल दास चरण कमल दास सब विद्मान्यो मन तभी पयो प्रसन्न गुरु जोग तख्त दियन गुरु रामदास नाये रामदास सरी नाये रामदास नाये रामदास सरी दस सरी दस सर नाये रामदास सरी नाये रामदास नाये रामदास सरी हम अब गुण बार

रघुवंश रघुवंश तिलक दशरथ कारी मन बाछे ताकी शरणं रघुवंश तिलक दशरथ कारी मन बाछे ताकी शरणं सतगुर सेव अलखगत जाकी।

आनंद सावधा पार करके कीर्तन की समाप्ति अरदास होगी हुक्मनामा कड़ा प्रसाद की देख बच्चियां वालों गुरमुख परिवार वालों जो सेवा है वो भी प्रवान करनी तो आओ हम आनंद सावधा पार सारे मिलके करिए गुरु नानक पातशाह मेहरबान सतगुरु आप जी दे प्यार वाले गुरसिख माई पाई साहब जी जिन्हां नूं आप जी ने बख्शिश करके ए दात बख्शी और आप जी दे दरबार ही जुड़ के आप जी दे बख्शिया खजाने विचों सतगुरु आप जी दे पवित्र पावन शब्द दा आदर करदे हैं कीर्तन भेट गाउण अरदास कराउंदे हैं अंतरगामी गुरु जी आप अपने गुरसिखां नूं बच्चे बच्चिया नामदान बख्शो कारोबार च वादे बख्शो सिखी जीवन सत्संग दी दात बख्शो

हे रविदास, किस आस पे बैठा है कभी ना तेरे दर्शन होंगे। सा संगत जिदे मन विच इन्ना वैराग होवे, वो फिर दुनिया दे राग रंगा वल, धन दौलत वल किवें ध्यान।

सब कुछ है जो सत वचन नहीं तो फिर कुछ भी। एक कथा केवल सुनन वास्ते नहीं सिख्या वास्ते के पति पत्नी होन ते उन्हां दा सुभाव और विचार कैसा होवे भगत कबीर साहब वर्गे। कबीर साहब कहंदे ने अखबार ते घरवाली कहती है सत वचन। हुण इस नूं सुन के असी अपने मनां विच देखीए असी किन्ना कि एक दूसरे का कहना मन दे।

बचा रहे हैं। पर माता पिता घोर दुखी हो गए। अग्गे ते पुत्र दानी सी, अगो नू भी दानी निकली, अगो सतनाम सिलवा। एक दिन माता पिता ने कहा, रविदास तेनू पाले और तेरा विआह कर दिता। सोचे असी तू कमाई करके सानू खुआएगा, पर तू ते दानी, असी तेनू कमा के नहीं खुआ सकते। इस तरह कर, जो समान चाहिए ले ले, ते वखरे हो जा। साडे वालों कमाई कर, साडे वालों दान करी। माता पिता ने वखरे आकर दिता। शाही रस्ते ते अपनी चुगी पा ले, चौपड़ी पा ले। पर अजमान डाढ़ा दुखी होया। मापिया ने केवल इस करके वखरे कर दिता कि मैं पैसे नहीं कमांदा, ते कि दुनिया में जो सारे रिश्ते तन दौलत दे। मन दुखी होया ते अपने माधो दे नाल शब्द द्वारा इस तरह फिर भगत जी वचन करते।

गंगा स्नान करेंगे। भगत जी घर वापस आए, दिन बीतते गए। एक दिन एक महात्मा रविदास जी की चुटी

एहसान ते चले गए। बड़े समय बाद ओही महात्मा फिर आए, पगन दी ओही हालत ते पुछ देने रविदास, मैं तेरे एक पारस दे गया सी, ते भगत जी कहते ने मैनू ते पता नहीं जिथे रख गए सी उथे पिया होगा, आखो सतनाम सिद्ध। वो पारस दरवाजे दे नालो खोलिया, पारस हाथ विच पकड़िया, ते वो महात्मा कौन है? वो महात्मा और कोई नहीं, आप हरि परमात्मा है, आखो सतनाम सिद्ध। प्रिख्या लैण आए सन, समझ गए भगत ने माया ते काबू

जिससे मैं महात्मा गए। उस दिन तू भगत जी अमृत वेले जद उठते अपना आसन झाड़ते ने, पांच सोने दिया मोहरा निकल दिया, उन्हां मोहरा नूं ठीकरिया मिट्टी समझ के एक पासे सुट देते। जद मोहरा का ढेर लग गया सुत्या पिया पाखे आई रविदास, ये ठीकरिया नहीं मिट्टी नहीं ये सोने दिया मोहरा ने, मैं अपनी खुशी नाल तैनू दे रहा, इहदे विच मेरी खुशी है। सवेरे एक सेठ आवेगा तेरे सोहने मंदिर मकान बनाण वास्ते इनकार ना करे। एकदम भगत जी उठ के बैठ गए, घरवाली नूं उठाया ते सारी गल दसी। घरवाली ने कहा भगत जी जे परमात्मा की इच्छा है फिर सानू इनकार नहीं करना चाहिए। दिन चढ़िया एक सेठ आ पहुंचे, मोहरा दियां थैलियां भरी, मत्था टेक के कहन लगा भगत जी मेरे घर पुत्र कोई नहीं सी, मैं सुखना सुखी जे मेरे घर पुत्र होवेगा ते रविदास भगत दे मंदिर मकान मैं आप बनावांगा। उस परमात्मा ने मैनू पुत्र बख्शे, उस परमात्मा ने मैनू पुत्र बख्शे है ते मैनू हुण आके आ दियो मैं सेवा कर। सोहणे मंदिर मकान बन गए, भगत रविदास की जय जयकार होण लग पई। पर सत्संग इह समां किहड़ा सी, एक एक भी कौड़ा सच है, वह समा सी जब कोई नेवी जात का मंदिर नहीं सी जा सकता, कोई पूजा नहीं सी कर सकता, ते उस वेले की कथा। अज भी कई स्थान ऐसे हैं जिथे नेवी जात के स्टोर कास्ट नहीं जा सकते। हुण भगत दी सोभा

तीर्थ यात्रा का बहाना करके ए राणी चितौड़ को चली और स्थिति बनारस पहुंची और सात संगत किसे पासे नहीं गई स्थिति भगत रविदास ने तेरे जा पहुंची। अगे संगत बैठिया ने भगत रविदास हाथ विच खड़ताला ने ते नाले

तू ते दावे कर रहे पर बाणी की कहते अवर मरत माया मन तोल करदा बुजुर्ग मर जाए ते दिया पुत वो अंदर मन विच सोचते ने हुणे वड्डा ते मर गए हुण ये देखिए कि साडे हिस्से विच की आता है आखो सतनाम श्री भाई अवर मरत माया मन तोल मन विच ए तोलदे ने कि हुण साडे हिस्से विच की

पूज्य मंदिर सोहना घर सुंदर नारी सोहना रूप सोहनी कारवाई इस शब्द तू ए ना समझना कि दुनिया तिया पुत्र कारोबार छड़ के बह जाइए नहीं पानी ये कहती है कि सब कुछ है पर इस सब कुछ ना समझ क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का नाम ये चीजा दे कभी भी तेरा साथ

समय ना ने ये शब्द पूरा पड़ी शब्द सुने राणी का अता गुस्सा ते जांदा रे ते फिर राणी ने कहा चल ना भाई कुछ ब्राह्मण आए ने बनारस तो कहंदे ने तू चमार नु गुरु बनाए राणी कहन लगी चलो मेरे नाल दरबार आके उन्हां पंडतां नु कहा जिन्नी चुक सको उन्नी धन दौलत दे आगे सच दसो सच्चा भगत कौन है आए माया वास्ते सन जद माया मिली ते जेड़े पहला निंदया करदे सन ओही कहन लग पए भगत रविदास वर्गा ते भगत ही होई नी आखो सतनाम सिंह माया जी मिल गई खैर गल कोई भी होई असर यह होया कि राणा भी श्रद्धालु बन गए भगत जी ने चितौड़ बुलाया कई दिन सत्संग होता रहा और आज आखिरी दिन बड़ा वड्डा पंडाल लगा राणी का सदा तो फिर कौन ना आवे हजारां लोग पंडाल

मैं बड़ा ऊंचा, मैं तो हमेशा ये भी कहना कि मैं बहुत नीवा हूं। मेरा बहन उठना भी नीवियां दे नाल पर एक गल

कुछ पछतावा कीता है कि हे निरंकार, मैं संसार ते आके जो कुछ करना सी ओ कीता नहीं। मैं मोह माया दी नींदर विच सुता रहा, मेरा सौ जागे हौन इस बार सोवा। इस संसार दे पांच झगड़ियां विच पै के मैं सारा जीवन अपना एवें व्यर्थ गवा लिया। सेजे रमत नैन नहीं पेखो। हे परिपूर्ण परमात्मा, तू ता मेरे हिरदे रूपी सेज ते जाग रहे हैं, पर मैं मोह माया दी नींदर विच सुता ही रहा। कदे तैनू वेखण दा जतन ना कीता, कदे तेरे चरणा विच जुड़ के ओ महान रस ना मान सकिया, जिस नाल मेरा लोक परलोक सौरदा सी। इसलिए मेरी मत बहुरी हो गई।

पंच को झगड़ा झगड़त जन्म गवाया, संसार वल निगाह मार के वेखिए बस इना पंजा झगड़िया विच ही मनुख सवेर तो शाम तक और रात तो सवेर तक इना ही झगड़िया विच पिया होया। इसनू परमेश्वर दा सिमरन भोली गया। इसे लई गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे हन, अब मैं कौन उपाय करूं, जे बिद मन को संसा चूके पवनिद पार परो, जन्म पाए किश पलो ना कीनो ताते अधिक डरो। इसलिए कबीर जी कहिंदे हन, भाई सुख तां उना ही पाया है जिन्हां ने जपिया श्री वाहिगुरु। तो इसलिए झूठी माया सब जग बांधिया, झूठी माया ने तां सारे जग नू बनिया, पर रब दे प्यारे अमृत वेले जाग के नाम जपदे हन, सेवा सिमरन करदे हन, अपना जीवन सफल करदे हन। सेजे रमत नैन नहीं पेखो, ए दुख कांस्यो कहोरे, मेरी मत बौरी मैं राम बिसारियो, किन बिद रहन रहोरे, बाप साब का करे लड़ाई, माया सद मतवारी, बड़े पाई के जब संग होती तब हूँ ना है प्यारी, कहत कबीर पंच को चगरा चगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया। कबीर जी कहंदन, मैं राम रमत

हे परमात्मा मैं तेरे दर दा भिखारी हां मंगता हां आरता मैंने मंगता जिथे आरता दा अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरंभ करते हुए कहते ने गोपाल गोमन प्रतिमी पाल मैंने पालना करने वाला सर्वशक्तिवान श्री

0: मुट्ठी चापी करनी चरण घुटने उन्हां नूं सुख देना क्योंकि अमृत वेले ओही जाग सकदा है जो समय सिर रात नूं आराम करेगा। ते गुरु के सिख मुट्ठी चापी करके बड़े प्यार दे नाल गुरसिखां नूं सवाया करदे सन। उचारण करो श्री
1: वाहिगुरु।
0: ये पूरने सिर्फ सिखां ही ने नहीं पाए, जदों काबल तो संगतां आईयां ते धन गुरु अर्जन देव पातशाह आप भी पिपली साहब गए, गुरु का लंगर बना के उन्हां दे धर्म सपत्नी माता गंगा जी दोनों जने जा रहे हैं गुरु के दर दी, गुरु के सिखां दी सेवा करन लई। धन गुरु अर्जन देव पातशाह पखे दी सेवा कर रहे हैं ते जगत माता गंगा जी सारियां दी जल पानी दी सेवा कर रहे हैं। ते जदों संगतां नूं लंगर छका लिया ते हुण जगत माता गंगा जी हाथ सुचे करा के ते संगतां दे जूठे बर्तन मांज रहे हैं ते धन गुरु अर्जन देव पातशाह मुठी चापी कर रहे हैं। आप समर्थ पुरख होंदे होए सर्व कला समर्थ आप होंदे होए भी एडी सेवा दे पूरने पाके दसे पंजवें गुरु नानक जिन्हां दी उस्तत करदिआं पट्टा ने कहा कि गुरु अर्जन प्रतख हर गुरु अर्जन सिर छत्र आप परमेश्वर दियो। एडी वड्डी हस्ती होण दे बावजूद धन गुरु अर्जन दे पातशाह किवें सेवा दे पूरने पा के सानू दसे। छामा दा समा है, किसे ने पछाणिया नहीं कि जिन्हां दे दर्शनां नूं असी आए हां ओही साडी पखे दी सेवा कर रहे हैं, ओही जल पानी दी सेवा कर रहे हैं, ओही मुठी चापी कर रहे हैं। ते जिदी भी मुठी चापी करदे हन ओ सिख आशीषां दे रहे हैं। धन है गुरु के सिखा, तेरा जीवन धन है, तैनू नाम चित आवे। वाहिगुरु ने जो तैनू सेवा दा प्यार बख्शा कोई सेवा दा किनका गुरु साडी भी चोली पावे। इस तरह दियां आशीषां लै रहे हैं गुरु अर्जन देव पातशाह आप प्रतख हर।

0: म्यूजिक मास्टर पेश कर देने शब्द कुर्बानी। श्रवण करो प्रोफेसर दर्शन सिंह जी दी नवी कैसेट अपना कार।
1: ते जे वो अपनी मर्जी नाल आनंदपुर दी धरती ते बैठ के अपने जीवन का फैसला भी ना कर सके उन्हूं उत्थों ही रोक दिता जाए। जे वो अपनी मर्जी नाल अपनी ही राजधानी दिल्ली विच भी ना पहुंच सके रस्ते विच।
0: भाई हरजिंदर सिंह श्रीनगर वालियां दी नवी कैसेट

परम सत्कारयोग सत्संग जीओ, आओ हुण आपां भाई जसवीर सिंह जी पौंटा साहिब वाले पास्यों शब्द कीर्तन सरवण करिए। शब्द भगत कबीर साहब जी का उच्चारण किया होया जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज उपदेश कर रहे हैं। मन ना डिगे तन काहे को डराए, मन नू डराने दी की लोड़ है। मन ना डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल चित।

सुत अखर किने राम नाम एक अखर किनका एक जिस जीव सावे ताकि महिमा गनी न आवे कांखी एक दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उतारो सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम रहो प्रभ कह सिमरन गर्भ न बसे प्रभ कह सिमरन दुख जम न सह प्रभ कह सिमरन काल पर हरे प्रभ कह सिमरन दुश्मन टरे प्रभ सिमरत कछ बिघ्न न लागे प्रभ कह सिमरन अनदिन जागे प्रभ कह सिमरन पौ न व्यापे प्रभ कह सिमरन दुख न संतापे प्रभ का सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक हर रंग प्रभ कह सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध प्रभ कह सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध प्रभ कह सिमरन जप तप पूजा प्रभ कह सिमरन बिन सह दूजा प्रभ कह सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ कह सिमरन दरगह मानी प्रभ कह सिमरन होए सो पला प्रभ कह सिमरन सो फल फला से सिमरे जिने आप सिमराए नानक ताके लागो पाए प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ कह सिमरन उदरे मूचा प्रभ कह सिमरन तृष्णा बूझे प्रभ कह सिमरन सब किच सूझे प्रभ कह सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ कह सिमरन पूर्ण आसा प्रभ कह सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माहे समाए प्रभ जी बसे साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरे से तनवंते प्रभ को सिमरे से पतवंते प्रभ को सिमरे से जन परवान प्रभ को सिमरे से पुरुष प्रधान प्रभ को सिमरे से बेमोहताजे प्रभ को सिमरे से सर्व के राजे प्रभ को सिमरे से सुखवासी प्रभ को सिमरे सदा अविनाशी सिमरन ते लागे जिने आप दे आला नानक जन की मंगे रवाला प्रभ को सिमरे से परि पुकारी प्रभ को सिमरे तिन सद बलिहारी प्रभ को सिमरे से मुख सुहावे प्रभ को सिमरे तिन सुख बिहावे प्रभ को सिमरे तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरे तिन निर्मल रीता प्रभ को सिमरे तिन आनंद कनेरे प्रभ को सिमरे बसे हर नेरे संत कृपा ते अनदिन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभ कह सिमरन कारज पूरे प्रभ कह सिमरन कबू न चूरे प्रभ कह सिमरन हर गुण बानी प्रभ कह सिमरन सहज समानी प्रभ कह सिमरन ने चले आसन प्रभ कह सिमरन कमल विगासन प्रभ कह सिमरन अनंत चुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार सिमरे से जन जिन को प्रभ मेया नानक तिन जन सरनी पिया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग बेर उपाए हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चौकुंट जाते हर सिमरन तारी सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना।